0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन आप सुन रहे हैं रेडियो अमन अमन
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

बिल्कुल प्रोग्राम शायद मोरो संख्या तो लोग हो रहे हैं बिल्कुल जांची दे आमीन वाले सिक्किम दिखना आमीन वाले नवी नर नवी संदर्भ बिल्कुल डेर लिसनर बिल कर हाँ शहर तो आमीन नवी कि मैं ये नहीं कि मैं गमचे न टपेदी तो तगा बिल्कुल दर्द आप लेके वाह डेर जो तुम्हाने होगा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बच्चियों, सिर्फ एक हदीस आपको सुनाता हूं, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और आप मुआशरे के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अरबों एजा कानत फीक मा दर्रक मा फातक मन दुनिया, कि मेरी उम्मत चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। हिफ्ज अमानतन, सिद्क हदीसन, हुस्न खलीकतन, इफ्फतन फी तुमतन। चार बात फरमाया कि मेरी उम्मत किसी को धोखा ना देना, सुभान अल्लाह, किसी को धोखा ना देना, बद्दयानती ना करना। दूसरा फरमाया सिद्क हदीसन, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुना कर सकता है, दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ ना बोलो, सच बोलो अल्लाह के वास्ते। तीसरी बात फरमाई हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे कर लो। और अच्छे अखलाक का एक लफ्ज है बर्दाश्त, लोगों की बर्दाश्त करो, नेगेटिविटी बर्दाश्त करो। चौथी बात आपने फरमाई इफ्फतुन फी तुमतिन, कि रिज़्क हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, हराम चीजों का कारोबार ना करो, उससे कभी चैन नहीं आता।
0: करक और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हो चुका है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगीदल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबे उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरड़।

अब्दुल रहमान करक सरा दरता मेला विदायशी और देना इलावा त्वेब करक पछाइन प्लाजा शे दिकून दे दलता हां दरता मेला विदायशी उमर दिन प्लाजा शे तुसेता 22 ग्रेड शॉपिंग सेंटर सरा मेला विदायशी देने इलावा पौने शे तुसेता मेला विदायशी गुल मोहम्मद बाज मोहम्मद इतफाक होलसेल डीलर सरा पौने शे बिल्कुल दिकून दे।

लेबंबर हिकड़ी दे योपंजोस्तान शहीद शविदी द हिजबुल्ला सरा जंकिया तलस इसराइल फौजान हम हलक शविदी इसराइल लेबनान मुख्तलिफ हलको के बम्बरे कोलुसरा पदर्जन उतनान शहीद करी दी द मीडिया रिपोर्ट तर महा इसराइल फौज कलाविया आओ तबनीन के तिबी मरकजों निशाना जोड़ करी दी पाए के दर्जन उतनान जख्मी शविदी वालेबल हिजबुल्ला तैबा के इसराइल फौजी टिकाने बांधे हमला करी दा लेबनान मजहमती तंजीम और इसराइल फौज पमास के जंकिया तलस इसराइल फौजान हलक करी शविदी द मीडिया रिपोर्ट तर महा हिजबुल्ला जदीद ड्रोन इसराइल दिफाई निजाम लपारा लोई चैलेंज जुड़ शविदी इसराइल फौज हिजबुल्ला जदीद FPV ड्रोन मुकबिला निशी कवले अवसुणान देखो दलोब खबरुना।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

खजी हुई। सलाम अलैकुम विक्रम भाई, फजर यमा सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम भाई, वही दृढ़ टेमा प्रोग्राम दिया मुबारक शाह कोट कश्मीर के लिए ना भाई। जुबेदा नूर तुम्हें सलाम और का भाई।

0: सूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करत, आपकी अपनी आवाज़।